तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: is Ujala Life. Ujala Life.
1: डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, प्लीज एक बात सुनती जाइए, बस एक बात, डॉक्टर साहब।
2: कहिए।
1: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है।
2: क्या हो गया है?
1: मुझे प्यार हो गया है।
2: अच्छा, मुबारक हो।
1: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे?
2: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
1: जी वो,
2: बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब?
1: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
2: ओह, थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
1: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
3: ओए चान जी।

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

भक्तजनों, हम आज आपको कांवर की महता सुनाते हैं। एक बार भगवान परशुराम अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता रेणुका जी का शीश काट देते हैं। इस पाप से बचने के लिए वो उपाय खोजते हैं। नारद जी के कहने पर परशुराम जी भगवान शिव की उपासना करके हरिद्वार से पावन गंगा का जल कांवर द्वारा लाकर शिव भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और उसी चरणामृत को लेकर अपनी माता के मृत शरीर पर डाल देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से रेणुका जी को जीवन दान मिल जाता है। ऐसे हैं करुणाधारी भोलेनाथ। तो आइए आनंद लीजिए इस भजन का।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

हाय दिल बेचारा यारा तेरे उठे हारा तेरे पीछे मारा मारा वे हिलक गाना हिलक फील गुड गाना हियर ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो. हिलक गाना गेजोंगे डोर नीमंड मिंडर दन जिमी खान एंड अफकोमस्टिग उट द पाकिस्तानी मूवी परी हट लव. उजाला रेडियो है ये सुनो वालो, मैं हूँ अमित जयराम. Und ja, wie auch immer, was ihr auch doen bent, geniet lekker van deze heerlijke dag, van deze heerlijke momenten samen met Ujala Radio. Ik zou zeggen, geniet lekker van de heerlijke gevarieerde Ghana. Isbar Sunidhi Chauhan Kesat.

0: अच्छा गाना है, हिलकर फील गुड गाना, ये नींदो का नशा जो आंखों में है भरा, तेरा है तेरा ले ले तू। यानी मम्मी ने दान सुनी थी चौहान ऑन द फोकल्स और फिल्म का नाम है रॉकी हैंसम में मम्मी ने दान जॉनी एब्राहम इन द हॉफ्ट्रोल। या एक सिर्फ जॉनी एब्राहम मार ऑफिशियल इज इट गवान जॉन एब्राहम। या स्टूर गाय हिट गानों का मेगा हिट के साथ वंदाग हियर बाय उजाला रेडियो। वे हैबे हेरलिके गवारियर्ड गाना सोअस जे अल्टाइड फन ओंस गवेंड बेन, हेरलिके न्यू रिलीजेस, सोम्स एन पार ओवे गाना en natuurlijk straks ook de jaren 90 Ghana van dit uur. Ja, ik zeg altijd, whatever you do, keep it on Ujala. Heerlijke momenten van heerlijke Bollywood entertainment op jouw favoriete radio.
1: Was

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया। आवाज है लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। या इक हैड इट गेज़ेग्ड टोच। ओक दिस यूर्टे हैव एन हीलके यारे 90 गाना एंड इट इज ऑफ दिस मोमेंट हम आप में कुछ हो गया।

जैसा है वैसा ही पसंद मुझको तू जानो. I just wanna feel your body, touch my body. Don't be shy, my honey. ये लेके फील गुड गाना और फिल्म का नाम है बाला और गाना का नाम है डोंट बी शाय. यू हर्ड द स्टेम फॉर निमन मेरे दम बादशाह शलमली कोलगरे एंड गुरदीप मेहंदी. ये लेके गाना, ये लेके गफारियत गाना ऑन द वन एंड ओनली दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो द बिगेस्ट हिंदुस्तानी मिक्स. दैट इज नेचुरलक उजाला रेडियो और वो भी अम्मी जयराम के साथ. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze Ghana, de stem van Nakash Aziz.

खूबसूरत गाना तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और जर्द सितारा का मतलब है, ja, letterlijk vertaald is het heldere gele ster. Tu rate diwani, mijn zerde sitara. Awaze Atifa Slum, or filmkanamraha Rustam.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथे गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेरा से परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और स्वर्गीय धर्मपत्नी पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर और परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतौस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु अम्स्टरडम जयतोस के वोन जोरख सेंट्रम एबन हेजर में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निकेरी राम अवध सुचित वैख का रहने वाला जोधा। अलमेर और अम्स्टरडम से समस्त परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर, परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतौस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल के मृत्यु अम्स्टरडम जयतोस के वोन जोरख सेंट्रम एबन हेजर में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम इलाकानिकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार के शाम में 6:30 बजे से 7:15 बजे तक। फनाफन फन हालफ जीफन तत्कवर्तो फर जीफन एटवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में। और अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 12:30 बजे मोरखन देंसदाख हालफ एन किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-23-78-73-61 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार नेपाल के दुख में शामिल।

आतिफ असलम की आवाज और स्टेशन उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हम लोगों के वेबसाइट आप देखें ujala.nl, नेमोंस ओवरऑल में, और डाउनलोड कर ले उजाला के ऐप जो है।

तुझ में रब दिखता है, रूप कुमार राठौड़ की आवाज, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से। गीत को आप सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों। और आपके साथ हम भी सुन रहे हैं।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और स्वर्गीय धर्मपत्नी पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर और परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतौस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल के मृत्यु अम्स्टरडम जैतोस्त के वोन जोरख सेंट्रम एबन हेजर में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निकेरी राम अवध सुचित वैख का रहने वाला जो था। अलमेर और अम्स्टरडम से समस्त परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर, परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतौस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल के मृत्यु अम्स्टरडम जैतोस के वोन जोरख सेंट्रम एबन हेजर में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम इलाका निकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार के शाम में 6:30 बजे से 7:15 बजे तक। फनाफन फन हालफ जीफन तत्कवर्तो फर जीफन एटवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में। और अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 12:30 बजे मोरखन देंसदाख हालफ एन किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-23-78-63-61 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार नेपाल के दुख में शामिल है।

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file aan de grens. Door de controles een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde, 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

उजाला रेडियो डे अब प्लस पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा

जब से बलम घर आए तो जियरा मचल मचल जाए। लता जी की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म आ

एक ऐसी आवाज जो हर शख्स की पर्सनैलिटी में डल जाती थी, वो थी रफी साहब की आवाज। उनकी आवाज में गाई हुई गैर फिल्मी गजलों ने क्या गजब ढाया था।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और स्वर्गीय धर्मपत्नी पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर और परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतौस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु अम्स्टरडम जैतोस के वोन जोरख सेंट्रम एबनहेजर में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम निकेरी राम अवध सुचितवेख का रहने वाला जोधा। अलमेर और अम्स्टरडम से समस्त परिवार नेपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार और स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री पंडिता यशोमती नेपाल कन्हाई सिंह का पति लड़कन राजकुमार नेपाल, अनिल कुमार नेपाल और पवन कुमार नेपाल के पिता, पोता अक्षय कुमार, पोतिन विभा नेपाल और पोतिन चांदनी जुनेया के आजा, पोदमाद रॉय का अजवा ससुर, परनातिन अमायरा का परनाना, अम्स्टरडम टेक्सेरा द मतौस्त्रात का रहने वाला श्रीमान हरिदत्त अयोध्या प्रसाद नेपाल की मृत्यु अम्स्टरडम जैतोस के वोन जोरख सेंट्रम एबनहेजर में हो गई है। जोधा के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले सूरीनाम इलाका निकेरी राम अवध सुचित वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज सोमवार के शाम में 6:30 बजे से 7:15 बजे तक। फनाफन फन हालफ जीफन तत्कवर्तोफर जीफन एटवार सेंट्रम वेस्ट खार्दे के मुर्दालय ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और अर्थी के दाह क्रिया कल मंगलवार के दिन में 12:30 बजे मोरखन देंसदाख हालफ एन किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-23-78-61 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो समस्त परिवार नेपाल के दुख में शामिल है।

और कुछ हाँ कुछ याद आने लगा, कुछ बात जाने लगा, तो फिर इसमें दिल क्या करे, फिल्म का नाम भी दिल क्या करे, उदित नारायण और अलका याग्निक से आप गीत को सुने, और इन्हीं दोनों से एक और गीत, बहुत ही सुंदर गीत।

चांद छुपा बादल में उदित नारायण और अलका जी से आप सुने फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम।

याद रहेगा, हाँ याद रहेगा, प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। फिल्म उमर कैद और गीत के गाने वाले लता जी एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है ये।

जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा, कुमार सानू की आवाज। और अब मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे शारदा के साथ में फिल्म गुमनाम का गीत।

सभी सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आप सभी सुनने वालों को अदाब अर्श और नमस्कार। मुझे यकीन है कि कितने सुनने वाले इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। प्रोग्राम आगाज करती हूँ आशा भोसले की गाई हुई ये भजन से।

अमीरों की परमेश्वर रूहानी अंदाज में पेश थी ये भक्ति गीत। संगीत देने वाले थे श्री रामचंद्र और महान कवि प्रदीप का गीत रचना था। ऐसे ही रूहानी अंदाज में नाथ शरीफ पेश है। महेंद्र कौर की आवाज में तर्ज है, नूरे नबी से रोशन है सीन।

छाया गंगुली से पेश थी ये गजल शायर मखदूम मोहियुद्दीन का कलाम और मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी। कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, उस्ताद गुलाम अली से पेश है ये गजल।

दिल की बात कहीं नहीं जाती, बेगम अख्तर की आवाज में पेश थी ये गजल और महान शायर मीर ताकी मीर का कलाम था। फिर किसी से बातें वो मुलाकातें अब नहीं होंगी, रातें तो होंगी, रातें तो होंगी, पर वो रातें अब नहीं होंगी। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुड़ते हो गई मुस्कुराए।

आज सोचा तो आंसू भर आए, गजल शौकीन के लिए कुछ गजलें सुनवाए। प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं। अब हम आपको हल्के हल्के मीठे धुनों में नगमे सुनवाएंगे, जिसे बचपन से संगीत सुनने की शौक है, तो कहीं दिल के कोने में दबी हुई नगमे उभर आएंगे, जैसे कि ये दो गाना। ये किसकी आवाज है? शायद आप पहचान जाएंगे।

पतंग चली बादल के संग, जी हाँ याद आई ना ये किसकी आवाज थी। फिर भी बतला देते हैं गाने वाले थे शमशाद बेगम और उमा देवी। उमा देवी जो फिल्मों में मजाकिया रोल अदा करती थी और टुनटुन का नाम से मशहूर थी। अगला जुगल गीत आइए सुने, इस बार शमशाद बेगम की साथ सुर से सुर मिला रहे हैं मोहम्मद रफी साहब।

क्या थी गम खाना पड़ेगा। मौसिकार नौशाद अली की मौसिकी और शकील बदायूनी का कलाम था। गीता दत्त शोही आवाज में क्या सुनाएंगी, आइए सुनें।

नगमा पेश था और ये नगमा फिल्म कमांडर में से लिया है। परवाह कर उसकी जो तेरी परवाह करे, जिंदगी में जो कभी ना तन्हा करे, जान बन के उतर जा उसके दिल में जो जान से भी ज्यादा तुझसे वफा करे।

फिल्म टॉवर हाउस का नगमा पेश था और ये डुएट अजीत और शाकिला पर फिल्माया गया था। सदियों से इस दुनिया में चल रही है मोहब्बत की दास्तान। दुनिया की दो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग न जाने कैसे मिल जाते हैं एक दूसरे से, दिलों की दौड़ जोड़ती है और बन जाती है मोहब्बत की एक नई दास्तान। ये सिलसिला है प्यार का, जिसका हिस्सा है हम और तुम।

पल जो मिला है तुमको जीने के लिए। खूबसूरत अंदाज में पेश था ये सूफियाना कलाम CH आत्मा की आवाज में। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत। आप प्रोग्राम को सुनते जाना, अभी थोड़ी देर में फिल्मी दुनिया पेश किया जाएगा।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं, इस हिस्से का प्रोग्राम में हम अक्सर फिल्मी दुनिया का सुनहरी दौर के महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ, जो आज के दौर की कलाकारों का मिसाल है, प्रेरणा है, फॉरबिल्ड है। आज हम एक ऐसे ही फनकार के बारे में बयान करेंगे जो अपनी मखमली आवाज़ से हम सबके दिलों में घर कर गई। वो गायिका है सुमन कल्याणपुर। वो कौन थी, उनकी पैदाइश कहाँ हुई और किस खानदान से थी, इन सब पर हम तवज्जो देंगे। पर हम इस महान गायिका की आवाज़ में ये गीत सुनवाते हैं।

अभी आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत सुना जिसके बारे में हम बयान करेंगे। उनके निजी जिंदगी और संगीत सफर के बारे में हम छोटे रूप में कोशिश करेंगे बयान करने को। सुमन कल्याणपुर कमाल की गायिका थी, जबरदस्त सिंगर थी। उनकी पैदाइश 28 जनवरी 1933 में कोलकाता में हुई थी। सुमन जब 3 साल का था तो उनकी वालदेन हिमादी फैसला किया ढाका में रहने को। उनके वालिद शंकर राव हिमादी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सुपरवाइजर थे। सुमन हिमादी अपनी 5 बहनों और 1 भाई में से सबसे बड़ी थी। माँ सीता हिमादी अपने परिवार के साथ खुश थी। जब सुमन 6 साल की थी तो उनके वालिद की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की वजह से पूरा खानदान मुंबई चले गए। फिर हिमादी परिवार मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। सुमन को बचपन से ही मौसिकी और पेंटिंग में शौक थी। मुंबई में उन्होंने मशहूर सिंध कोलंबा हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल किया, पर बचपन में उनका मकसद गायिका बनने को बिल्कुल नहीं थी। सुमन को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। स्कूल ख़त्म करने के बाद उनकी सलाहियत मतलब इंतेखरीतैत की वजह से उन्हें मुंबई के बहुत ही मशहूर आर्ट कॉलेज सर जी स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग पढ़ने के लिए दाखला मिल गया। बातें आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं फिल्म जहां प्यार मिले में से ये गीत।

महान गायिका सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने भी ये गीत सुना। इस गीत से पहले आपने सुना कि सुमन को बचपन से ही पेंटिंग, ड्राइंग और संगीत में शौक रखती थी, क्योंकि वो ढाका और कोलकाता जैसे जगहों पर रहती थी और बंगाली और मराठी जुबान उनके लिए आसान थी। इसी दौरान उन्होंने पुणे प्रभात फिल्म से क्लासिकी संगीत सीखना शुरू किया। म्यूजिक डायरेक्टर और खानदान की करीबी दोस्त पंडित केशव राव भोले से। पर सुमन ने कहा कि शुरू में उनके लिए गाना अहम नहीं था, सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग में दिलचस्पी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मौसिकी में ज्यादा ध्यान देने लगी। फिर सुमन ने उस्ताद अब्दुल खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से बकायदा सीखना शुरू कर दिया और सुमन की छोटी बहन श्यामा हिमादी भी गायिका थी। सुमन हिमादी ने नेखदीन अख्तम फैफ्तख में बिजनेसमैन रामानंद सागर कल्याणपुर से शादी कर लिया, जिसके बाद वो सुमन कल्याणपुर के नाम से मकबूल हुई। रामानंद अक्सर अपने बीवी के रिकॉर्डिंग सेशन में साथ जाता था। सुमन कल्याणपुर की एक बेटी है जिसका नाम है चारुल अग्नि और वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ अमेरिका चले गए और चारुल अग्नि को भी एक बेटी है और नाम है ऐशियानी अग्नि और बाद में ऐशियानी अग्नि फैसला किया मुंबई वापस जाने को और वहाँ एक एनजीओ खोली अपने नानी सुमन कल्याणपुर के नाम से। हमने आपको सुमन कल्याणपुर की बचपन और पढ़ाई के बारे में इत्तला किया और किससे उसने शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल किया, पर कब उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे। गीत जो अब आप सुनेंगे फिल्म श्रीमान सत्यवादी में से लिया है। सुमन कल्याणपुर के साथ थे मन्ना दे साहेब।

इस गीत से पहले हमने आपको सुमन की बचपन के बारे में बतलाई और उसे किस किस से अपनी मौसिकी की तालीम हासिल किया। सुमन के घर के सभी लोग का झुकाव आर्ट ऑफ मौसिकी की तरफ था, पर बाहर गाने के लिए पाबंदियां थी, सख्त मना था। सुमन ने कहा, फिर भी मैं नेखती तो ये फैफ मेल ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने से इनकार नहीं कर सकी। ये मेरी आवाम के लिए पहली परफॉर्मेंस थी। उसके बाद मुझे गाने के मौका मिला मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में, जो नेखतेंद्रियम फैतह में रिलीज हुआ था। उसी दौरान अदाकार शेख मुख्तर फिल्म मंगू तैयार कर रहा था, जिसके कंपोजर था मोहम्मद शफी शेख मुख्तार। मेरे गाने शुक्राची चांदनी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने मुझसे फिल्म मंगू के लिए 3 गाने गवाए। सुमन ने कहा, कुछ ना मालूम की वजह के बिना पर बाद में संगीतकार ओपन नैयर ने मोहम्मद शफी की जगह ले लिया और मेरे 3 गानों में से सिर्फ एक लोरी कोई पुकारे धीरे से तुझे फिल्म में बरकरार रखी गई। तो इसी तरह मैंने नेखती फिल्म फैतह में रिलीज होने वाली फिल्म मंगू से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। आपने सुना कि सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी सॉन्ग फिल्म मंगू का गीत था। इस फिल्म में अदाकार शेख मुख्तर सुमन से 3 गाने गवाए थे, पर संगीतकार ओपन नैयर 3 गानों में से सिर्फ 1 गीत पसंद किया था। अब हम आपको फिल्म दखाबाज पिया में से ये गीत सुनवाते हैं।

संगीतकार चित्रगुप्त और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा तर्ज था आवासी महान गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिसके बारे में हम बयां कर रहे हैं। फिल्म मंगू के फौरन बाद सुमन ने मौसिकार नशत की हिदायतकारी में 5 गाने फिल्म दरवाजे में गाई थी, जो नेहतीन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुआ था, जिस फिल्म का पेशकश था इस्मत चुंगताई और हिदायतकार था शाहिद लतीफ। उसी साल नेहती फिल्म फेस्टिवल में सुमन ने मौसिकार ओपी नय्यर के मशहूर गाना मोहब्बत कर लो जी भर लो अजी किसने रोका है गाया था। साथ में थे मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त जी। जी हाँ, इस गीत में मोहम्मद रफी साहेब और गीता दत्त की आवाज सुनाई देती है, पर सुमन ने कहा उसे इस गीत में गाने के लिए कुछ सोलो पंक्तियां, मतलब कुछ सोलो लाइंस मिली थी, लेकिन सिर्फ उसकी खिदमत हासिल की गई कोरस में। इस गीत के बाद सुमन ने दोबारा मौसिकार ओपी नय्यर के लिए कभी नहीं गाई थी। और एक बात ये भी है कि डिस्क पर सुमन का नाम के बारे में जिक्र नहीं किया गया। संगीतकार ओपी नय्यर ने कहा कि कुछ वजह से सुमन के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर आए। शायद इसलिए क्योंकि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो उनके बेटी स्कूल में पढ़ती थी। अब हम आपको फिल्म आर पार में से वो मशहूर गीत सुनवाते हैं, आइए सुने।

फिल्म आर पार में से आपने अभी ये गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की, लेकिन गौर से सुनेंगे तो गीत में एक और आवाज़ सुनने को मिलती है। वो आवाज़ सुमन कल्याणपुर की है, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा नहीं गया। तो जैसे मैंने कहा था, सुमन की वालदैन नहीं चाहते थे कि उनका नाम रिकॉर्ड पर लिखा जाए। अब हम आपको सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में ये जुगल गीत सुनवाते हैं। फिल्म जहां आरा में से ये गीत लिया है।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के बारे में बयान किया। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब से ये नगमा।

दिल छू लेने वाली नुहमा पेश था, चित्रगुप्त की मौसीकी थी, कलाम था शायर मजरू सुल्तानपुरी का। हम रहे या ना रहे इस जहां में, गूंजेगी गूंजेगी मोहब्बत की ये सदा तुम्हारे लिए। फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है मेरे दिल ने, मुझे बस तुम्हारे दिल में ही रहना है।

सदाबहार दो गाना पेश था मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। दुनिया के फिक्र से आज़ाद हूँ मैं, हमें क्या गरज की जहाँ क्या है, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं हम।

कमाल का गीत आपने अभी द ऑल राउंडर किशोर कुमार से सुना, उन्हीं का सजाया संगीत था और इस गीत का तर्स खुद किशोर कुमार ने लिखे थे। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच बोलता हूँ सच बोलता हूँ, खौफ की बंदिश नहीं करता, बंदिश मतलब बपैरकिंग, तो धोपिया तू अब तो आ जा।

मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना। किशोर कुमार से आपने अभी ये गीत सुना। संगीत देने वाले थे संगीतकार राहुल देव बर्मन, गीतकार थे शायर गुलजार। कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम उस मोड़ पे आ पहुँचे हैं मोहब्बत में, जब जब वो मेरी जिंदगी में बहार बन के आए।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा, आवाज थी अलका याग्निक की। छुपा लेते हैं जो हर गम को अपने मुस्कुराहट में, वो अक्सर टूट जाते हैं अकेले तन्हाई की हालात में। छुपाते हैं दर्द दिल दुनिया की नजरों से इस तरह, जैसे कोई आग दबा लेता है अपने सीने में।

0: का नगमा आपने अभी स्वर की मारिका लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर नक्श लियालपुरी का। जिंदगी जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो एक असूल बना लो, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है और जो मिला वो लाजवाब है। इसमें मनदी क्या सुनाने को जा रहे हैं, मीठी आवाज में लीजिए पेश है।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

हाँ, भरकता गीत आपने अभी मनदे साहब से सुना। अगला नगमा पेश है, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा, मौसिकार रवि की मौसिकी थी, कलाम था शायर शकील बदायूनी का। इसी अंदाज में पेश है अगला नगमा एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: दिल छू लेने वाले नगमा पेश था, मौसिकार खयाम की मौसिकी थी, कलाम था शायर कैफी अजमी का। और ये नगमा में चार चांद लगाने वाली आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। अगला नगमा पेश है मुकेश जी की मधुर आवाज़ में।
1: जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन

0: अमर गीत पेश था संगीतकार सलील चौधरी का संगीत रचना, गीत रचना था जुगेश का। अब आशा भोसले का सुनाने को जा रही है, लीजिए पेश है
1: बॉय बॉय।

अभी आपने आशा भोसले की आवाज में ये गीत सुना, आशा जी जिसकी आवाज में नजाकत थी, लचक और शोखीपन थी। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। उजाला रेडियो के जरिए आप सुनने वालों को हर तरह का प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि देश विदेश का समाचार, नए से नए गीत संगीत और सुनहरी दौर के भूले बिसरे गाने भी सुनने को मिलते हैं। बदलते वक्त के साथ जो अपना रंग दिखाते हैं, मतलब निकलते ही पल भर में भूल जाते हैं, खुदी में इतने डूबे हैं ये खुदगर्ज इंसान के औरों के दर्द को बस एक तमाशा बनाते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए।

संगीतकार उषा खन्ना का सजाया संगीत था और शायर जावेद ने दिल की कलम से ये तर्श को लिखे थे। मोहब्बत मोहब्बत अधूरी रह गई, ख्वाब अधूरे रह गए, होंठ हंसे मगर दिल की जख्म गहरे रह गए। वक्त ने सिखाया हंस के जीना, मगर क्या करे, यादों की सहारे ही हम ठहरे रह गए।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्कार। खादिमाती निशा।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए